चित्ते शांति शांति ती ती ती डू डाय चिम याय हो ची डू डाय डू चिम यू डेम डेम आ ता दिगं शिव

फिरम ऐसे मेरा वो मात पिता का ये भैया जिनके कोखिया ली नया उतार सकल पंच के राम राम गुरु जी के बंदगी सकल पंच के राम राम गुरु जी के बंदगी मत करो गुमान भैया थोड़ा दिन के जिंदगी मत करो गुमान भैया थोड़ा दिन के जिंदगी जिनगी में जिनगी मनुष्य तन पाए के जिनगी में जिनगी मनुष्य तन पाए के सब भाई में मिलके रहो या उसी इस नवाई के सब भाई में मिलके रहो या उसी इस नव अरे राम राम प्रहलाद पुकारे ये भैया अब तो गोपी